0: का हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं है, नवाब शफीक का आदमी है वो।
1: सही, अब क्या कह रहे हैं अचानक?
2: ये औकात में रहो उमर, ये बड़े मामले हैं, इसमें अपनी गर्दन मत फंसाओ, कट जाएगी।
1: वो एक हिंदुस्तानी एजेंट है, हमारे मुल्क के सैकड़ों लोगों का कत्लेआम कर चुका है। आप कह रहे हैं कि ये मामला बड़ा नहीं है?
2: इस केस को भूल जाओ, चुपचाप अपने घर जाओ उमर।
0: मैं चुप बैठने वाला नहीं,
1: नेशनल असेंबली तक जाऊंगा और सबको बताऊंगा कि आप भी शामिल है इसमें।
2: धमकी देता है तो मुझे बैन जाओ।

0: कोई लेना देना नहीं है। नवाब शफी का आदमी है वो।
1: सही, अब क्या कह रहे हैं अचानक?
2: ये औकात में रहो उमर, ये बड़े मामले हैं, इसमें अपनी गर्दन मत फंसाओ, कट जाएगी।
1: वो एक हिंदुस्तानी एजेंट है, हमारे मुल्क के सैकड़ों लोगों का कत्लेआम कर चुका है। आप कह रहे हैं कि ये मामला बड़ा नहीं है?
2: इस केस को भूल जाओ, चुपचाप अपने घर जाओ उमर।
3: मैं चुप बैठने वाला नहीं,
1: नेशनल असेंबली तक जाऊंगा और सबको बताऊंगा कि आप भी शामिल है।
2: धमकी देता है तो मुझे बैन चुट।